0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाईं सँगै।
1: डिजिटल म्युजिक प्राली प्रस्तुत गर्दछ।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 9 AM
3: अहिले बिहानको 9 बज्यो।

रेडियो काठमाडौँ 92.1 द्वारा उत्पादित लोकप्रिय कार्यक्रम इन्द्रेणी चन्द्रमणि गौतमको साथमा रेडियो काठमाडौँ नेटवर्कबाट देशैभरि।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: It's 5 PM
3: अहिले अपराह्नको 5 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक 7 PM
2: अहिले साँझको 7 बज्यो।

0: रेडियो अरुण
1: अरुण
0: 97.6 MHz हरपल
1: हर
0: तपाईं सँगै
2: रेडियो अरुण टाइम चेक
3: इट्स 8 PM
4: अहिले रातको 8 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 9 PM
3: अहिले रातको 9 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 5 AM
3: अहिले बिहानको 5 बज्यो।